अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ।

तेरे दिल पे हो गया है तेरे दिल का लेमिनेशन. होल्ड माय हैंड राजा क्यों है तुझको हेजिटेशन. इतना गुस्सा इतना एंगर क्यों है तुझको फ्रस्ट्रेशन. तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन. सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रेजर्वेशन. तू जो चाहे ले ले मेरे दिल.

गोपीपते कंसरिपु मुकुंदा लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा जीवेपि बस्वाम ऋतमे।

0: Infectious music back to back. Radio Jabberjee 102.7 FM.
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

मीराबाई कहती हैं, कृष्ण मैं तुम्हारे बिना रही कैसे सकती हूँ, तुम पेड़ हो तो मैं उसका एक पत्ता, तुम सरोवर हो तो मैं उसकी मछली, तुम्हारे बिना

इसी तरह हम गोइंग नाउ टू द लवली कामिनी जयकरन. नाइस टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस. मोस्ट ब्यूटीफुल डे टू यू एंड योर्स. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग हियर विद अस. So just a few minutes to go at the top of the hour. There's a nice one, a local one, which will take us to the top of the hour. And then we have a special feature, which read out by Ragi. Stay with us, friends.

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।